सुबह मन दारम रैक फेवा था रंगक का ए लसन अस दिगमा मदाम है ना था मत एक एक ऐसा से अतर मांग में ना ए ऐस मांगे दे किया लही तला देख के गमंग मुल्ल लोग के मामु तक वन अस देखा हरी मां आदरणीय अस देखा मांग वेन में मांग बालांगी नस देखा कवद हरी मट अतले बे ए वागे अस देखा मांग बालांगी ना मैं जीविते पुरामा मां मांग बालांगी ना मां प्रार्थना करना माटे माई ती मांगे अस देखा कवद हरी दावसक मांगे वेन का ऐतकड़े मट अत पुलवनी सन सेन्ना मांग Pabo.

सुबह मंदारम रैक पे वादरनी तरंगा उंगा क्लासन आदरनी अस्तिबुने खालंग द केलनो आया हुए मे मामा लंगे इन्ने ए आलंग तमाई ए आदरे देनु न मूल काले मामे अस्वल द भाव हटुना ए असतुले हिटे मामा आहम बैंग हरे हितुनोत ए ससे वेन का आवाहरी इंदी केल मान्ना पुरुना एंडो अतराहुना है बे या माव तुरुल करंग मागे इरिसे आकारी मे असतुल वेन का आवाहर निपागेला की विहारी मादरे अदत मम विश्वास करनवा අහම්බෙන් හම්බෙන සමහර රස් කිව්වෙම ජීවිත කාලෙට මම තුකන වෙන කතන්දර රමණී